शस्त्र प्रमाण तीर, तीर मतलब निजा, तफंग तीरो तफंगो बंदूक, बड़ो राम जंगो रिवाल्वर, धनक धार अनियर धनसबान और उसने तीर जेड़े ने अनियर वर्गे होने चाहिए, अणियाले तीर जेड़े दूसरे तीर ने ना वो वज जानना ते मुड़के कढ़े जा सकते ते आदमी बच सकता, पर अनियर तीर जेड़े ने वो बार नहीं आगे, जदों एक बारी अंदर तस जानना जो खिचोगे नाल ही अंदर भी नाल ही लैदी दो कड़िया होंगे एव मुड़िया हुई है, एक सीधी होंगी तो दो एव मुड़िया होंगी, सीधी के अंदर चली जाती तो बहर आने लगे दूजिया जड़िया ने नाल फिर कहदिया हूं आ जा अकाल पुरख के कोल ही चल रहे हैं। हां जी इसलिए जे मेरिया भैन कोल कि होंगे ना शस्त्र दिल्ली यह हाल नहीं होना जोड़ा होया, पता की हाल हो सरदार साहब होनी शीशगंज साहब दर्शन करने लिए आ रहे, उन्होंने सरदार ने पूछे मोटरसाइकिल से बैठे हुए उन्होंने नहीं सी पता कि अज यह भाड़ा वर्तना है, डांग दे के मोटरसाइकिल के तारा च डेग के ते वारी वारी उन्हें ड्यूटियां लाई हुई से, एक ने सरिया मार गया सरदार जी के सिर ते वो थले डिग पे, दूसरे ने धार मारी पिस्तौल पेट्रोल की, तीसरे ने वो जिद सिगरट पीते होंगे ऐ करके वह दाड़ी भी सिखा चट फूकते थे अग लाती उड़न दह गए, जी बीबी जी सके बेचारे बड़े मायूस घबरा गए भजन की कोशिश, पर दुष्टा को कितने भजना कोल ना तो तीर ना तफंग ना राम जंग ना धड़क तार अलियर ना कबंध कोरड़ा तो कोल की सी जा राती टीवी वेख के आए थे जाके हम वी सी आर वेखना से यह कोल सी बाकी कुछ नहीं सी गहने पाए से उन्होंने दुष्टा ने एक ने इधरों फड़िया दूसरे इधरों फड़िया कपड़े फाड़ के सड़क के सरेआम बेइज्जतियां कीतियां उन्हां दियां जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह दे सिंघां ने इन्हां दियां धियां नूं दुष्टा दे कोलों छुड़ा के ते घरीं जा के छड़ के बाइज्जत तौर ते छड़ के ते आउंदे सी दुष्टा ने यह नहीं सोचा कि भाई इन्होंने कभी साडे ते उपकार किए, ध्यान दे कोई जकारे फिर छड़ लेंगे जरा हुण कर लेंगे, यह नहीं सोचा गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कोल ब्राह्मण तिलक लाया होया जंगू पाया होया ते बहुत रोंदा होया कुरलाउंदा आया कहिंदा महाराज मैं बच्चा व्याह के लिया रहा सा ते मेरी नूह नूं आ दुष्ट जिहड़े ने मुगल दुंबे खाण वाले पूरा पूरा बकरा खाण वाले वह खो के लै गए। गुरु गोबिंद सिंह साहब एम सिंह सजे से उन्हें आख्या भाई अजीत सिंह जी तुम उठो अपने साहबजादे क्या उठो नाल दो चार सिंह लै लो इन्हों को एड्रैस लै लो और उस देवी हुणे ही आजाद करा के लियाओ और इस पंडित के घर जाके आप पूरी हिफाजत नाल छड के आओ। उन्हां पंडितां ने अज उन्हां अजीत सिंह दीआं भैणां नूं बाजार दे विच नंगिया करके साडी अखां दे सामने इन्नी बेइज्जती की जो मेरे को कई नहीं जाती, लेकिन मैं कहना सिंगो ए पांच शस्त्र रखो धड़क धार अड़ियर ऐसे तीर रखो बार आने लगे नाल आंदरा कमंद कोरड़ा, कमंद कोरड़ा एक ऐसा शस्त्र हों सरिए लैके आए थे ना मारन वो सरिया लैके जो आवे कमंद कोरड़ा ए भुआ के सरिए के मारी है वो फिर एवं बल पा के सरिए काबू कर लेंद खिच के सरी अगले का अपने हाथ ही फड़ लेता उन्होंने हथे कर छुटी एको ही छुट्टी का बस फिर बोले सो दिया। इस वास्ते अज तुसी बाबा दीप सिंह साहब शहीद आजम का जवान मना रहे हो यह तुसी प्रण करके जाओ शस्त्र के धार नहीं बनना डरना नहीं। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने यह खंडे का अमृत सब सिखाया खंडे का अमृत क्यों सिखाया जी कृपाल का भी शिकार सकते होर भी किसी चीज खंडे का खंडे शस्त्र संस्कृत मौत कहते हैं मौत खंडा खंडे का अर्थ है मौत ते महाराज ने उन्हें पानी घोल के सिख नूं प्यार दिता मौत नूं घोल के सिख पी गया सिख गुरु का सिंह मौत नूं घोल के पी गया ते दुष्ट कहिंदा मैं तेनूं वेख लूंगा मार दूंगा ते सिंह आता
ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਮੈਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਵੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇਕਲ ਰਹੂ, ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹੂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ਸਤਰ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।

बिना शस्त्र के संग नर भेट जानो, बिना शस्त्र के संग नर भेट जानो। गुरु गोबिंद सिंह का मुखवा गए बिना शस्त्र, जे आप केस धरे हुए होण ते शस्त्र ना होवे ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सिखो भेड़ बकरी तो वध तुसी कुछ नहीं, इसलिए तुहानूं भेड़ बकरियां नहीं मैं बनाया, मैं तुहानूं सिंह बनाया शेर। और शेर पता कौन हुंदा है? शेर मैदान जंग विच उत्तों छाल मार के आउंदा, छाल मार के। मैं तुहानूं दसदा दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साड़न लई 12,000 की टोली आई, 12,000 की, 4,000 ते आया इधर फतेहपुरी वालों, ते 4,000 आया लाल किले वालों, ते 4,000 सामने उस स्टेशन वालों आया, ते जेड़े सी ना उन्होंने खिलारे हुए बंदूक लैके वह भज गए, जेड़े दुष्टां की फौज सी वह भज गई, ते दो चार साढ़े सिख बेचारे लागे कोतवाली, उन्होंने पिस्तौल ते उन्होंने रात ही खोले से डंडे इन्हें हाथ फड़ाते, वह डंडे लैके शीशगंज अंदर आन बड़े, असं डह सा कीर्तन कर बाबे ने साढ़े राम जपो जी ऐसे ऐसे हां जी, ये राम ही डे जपण, उन्हें सिखा आके कहा भाई खालसा जी हुण राम जपना छड़ो ते खंडे खड़काओ, 5 मिंट तुसीं होर चुप कीते रहे ते तुहानू इन्हां ने उत्ते ही आण के फड़ के जीवदे साड़ देना, धीआं तुहाडियां खिच के लै जाणियां, आ गोलकां गलकां लुट के गुरु साहब की बेदबी हो जानी, 5 मिंट केवल रहिंदे, जे कुछ कर सकते तो कर लो। यह साढ़े सिंह साहब बहादुर महाराज ने नमस्कार बख्शन, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने थापी दी, और इन्हों को शस्त्र से जिहड़ा सानू बाबा महाराज बाबा जरनैल सिंह जी ने कीर्तन च भेटा दिता सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने प्यारे खालसा जी, मेरी बेनती सुन लो, मेरी बेनती सुन लो, मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने थापी दी, इन्हों के अंदर वास किया और शस्त्र कढ़िया, 3-4 सिंह होर सी वह इन्हों के नाल हो गए, और इन्होंने छाल मार के बबर शेर जिवें बबर शेर के नजारे उत्थे मैं वेखे। गुरु गोबिंद सिंह की बाणी मैं पढ़ता हुंदा, पाप समूह बिलासन को कल की अवतार कहावेंगे, तुरकछ तुरंग सपच बटो करकार कृपान कम पावेंगे, निक्षे जिम केर पर्वते ता सोर दिवाले पावेंगे, पल पाल पया संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। ओ मैं सुनिया एक टुक, निक्षे जिम केर पर्वते, केर का मतलब बब्बर शेर है, बब्बर शेर जो भुखा होंदा है वह जो फिर पर्वत तो पवक मार के छाल मार के जो मैदान च आ उन्हें फिर जो है ना वो पता की लिखे वो जो आप पढ़ते हैं गुरु नानक साहब का, हां जी सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होवा, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा, अगे की है सिंह बुक्के सिंह फिर गजे, ते की होया मिर्गावली पन्नी जाए, मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर करवा, ऐ बाबे ने छाल मार के ना शीशा के पौड़िया तो तलवार इतने फल ली, ते जकारे छड़ते पज पै पज के वह 5-7 पिछे बेचारे मेरे वर्गे वह भी मगन मगन भजी आन, जो उन्हें देखा दुष्टा तो ये ते आ गए, तलवार इतने रखी बाबे जरनैल सिंह वाली, वह 4,000 जो सी ना फतेहपुरी वाला भज उठा, 10-15 दम टुट गए, 5-7 गोडे टुट गए, है जी जो भज उठे नाले ऐ वेखन वाले भजन, तो फिर एक उठे खलो गए, इन्हें आख्या गल सुनो असी गुरु गोबिंद सिंह हां, ना असी बीबी मारते हाँ, ना असी बुढ़े मारते हाँ, ना असी बच्चे मारते हाँ, ना असी भजदे मारते, असी भजदे नहीं मारते, तुसी प्यो दे पुत्तो खड़ो जाओ, नहीं तो असी इधर जाने जे आते ने उन्होंने छड़ के लाल किले वाल भज उठे, वह पहला ही अगे भज उठे, है जी 12,000 दुष्ट है साले बाबा जी ने, मैं तो कहना महाराज इन्होंने सुना के फिर मैं समाप्ति करनी है, क्योंकि तुम बहुत कुछ सुन रहे हो, 4वें दीवान लगा रज गए होवोगे, श्रवण करो गुरु गोबिंद।

दास दास को करियो जन नानक हर सरणई. प्लीज मेक मी द स्लेव ऑफ द स्लेव ऑफ योर स्लेव्स. सर्वेंट नानक सीक्स द लॉर्ड्स सैंक्चुरी. जाओ कृपा गोविंद सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुर मिले.

सारंग मजे परम तार तत हर को उपजे राग सारंग उकडे तान तरंग रंग अत ज्ञान गीत बंदानंग चक चक रहे देव दानम मुन छक छक।

राग गौड़ी मालवा विच ऋषभ धैवत कोमल ते मध्यम तीबर लगदा है। इस राग दे आरोह विच निषाद अते अवरोह विच धैवत वर्जित हन। इस राग दी जाति शाड़व शाड़व, वादी ऋषभ, संवादी पंचम अते समा दिन दा चौथा पैर है। इस राग विच हर नाम लेहो मीता लेहो शब्द दा गायन कर रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह।

हाँ क्या सलाही किरवजन। हे मेरे साईं, ए जीव तेरी की उपमा कर सकता है। मच्छी की जाने के सागर केडा वड्डा है, पंछी की जाने के आकाश केडा वड्डा है। हाँ क्या सलाही किरवजन, वड्डी तेरी वड्याई। तू अगम दयाल अगम है, आप ले मिलाई, मैं तुझ में बेली कौन। ए गरीब नवाज, मेरा तो आसरा ही तू है, मेरे जीवन का सहारा ही तू है। मेहरबान साईं, मेरे रब्बी दाता, बचपन खेल कूद च गुजर गया, जवानी मस्तानी अपने आप का पता ही नहीं रहा। गरीब नवाज हुण तां बढ़ेपा आ गया। ए मेरे दाता, हुण तां कंबी दा बरूटड़ा हां, पता नहीं किस वेले मौत दी छल आवे ते रोड़ के लै जावे। हे मेरे धन गुरु नानक दाता, मैनू दर्शन दे। दर्शना दी दात पे मंगदा है कौन, प्यारी सासंगत राय बुलार आखो श्री वाहे। राय बुलार, ओ राय बुलार, राय पवे तलवंडी दा मालिक, पहली वेरी गुरु नानक नु वेख्या, गुरु नानक जोगा हो गया, अज रो रहा है बार खूह ते बैठा है। नौकर ने चौकी बिछाई है, उत्ते बह के राय बुलार रो रो के अरदासे पे कर। हे मेरे दाता, आ मैनु दर्शन दे। अखां चो अथरू डिगदे, चिट्टे दुध वर्गे दाड़े ते आखे पैंदे, मानो सुचे मोती जड़े हन प्यार दे। रोंदे अखां दियां सिपियां चो प्यार दे सोची सुचे मोती डुल रहे, ते अरदास करदा कि आवा पावे करिए प्यारी साध संगत अरदास। अज राय बुलार बेनती कर रहा है, हे निरंकार, धन गुरु नानक सतेव पातशाह, 12 साल का विछोड़ा किवें सारे आ जा सकता है। आओ दर्शन दे, अखां वस रही हैं, ते रसना बेनती कर रही है कि पहले सेवक

पिता जी मेरे नंकारी वीर नु ना मार, मेरे रब्बी वीर नु ना मार। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिता जी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे ननकारी वीर नु कुछ ना खो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहे है, सड़ जावन ए हाथ जिना हथा नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दिया पुब्बा निकल गई। कालू हुण तां रो रो के अखां दा पानी भी सुक गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा है गुरु नानक दे प्यार, गुरु नानक दे प्यार। लोकी कहंदे राय नू की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नू मुखातब होके कहंदा की

अरदास, सारी रात अरदास की थी। अमृत वेला हो गया, बेबे ने सोचे घर विच दूध है, माता बेसुध पई है, दूध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैण इशनान कीता, कर दी पाठ ते दही रिड़काउं दिए, दही रिड़के सोना मक्खन कढे। बेबे ने अपने सुंदर हाथ दे उत्ते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखेया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच वी मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इहनू कुछ खिला। ते वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लैंदी, ते कहंदी सां वीर मैं अखां पहले खोलदी आं कि तू पहले मक्खन मुंह च पांदा है। ते बड़े प्यार नाल तू आके निमाड़ी भैण दे हत्थां तू मक्खन चुक के मुंह च पा लैंदा। अज भी ओही भैण वीर आए मक्खन तू खा, मक्खन तू खा, तली उत्ते मक्खन पिया है। बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाड़ा मन उड़िया पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सचे पातशाह अमृत वेले कीर्तन जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने यार कीर्तन दी समाप्ति कर दी। बाबा क्यों? हजूर कहन लगे बेबे नानकी भी याद कर दी है। ओ सचे पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दी आवाज़ किवें सुन लेंदे हो मेरे सचे पातशाह। हजूर कहन लगे

0: हमारी पिक्चर है हमारे पास,
1: जो आया तो चलती सबको आई वाली है, इसके है तो सैबर विचारी है, अपना ही अपना
2: निका पैसा दान कर खुश हूँ।

किस पयाप सुनाइए कहने कथन ना पीजे गोविंद हर भावे पैजल खाई अवर ओट में सगली देखी अवर ओट में

चक चक रहे देव दानव मन छक छक क्यों भवान आत्म उपदेश भेष छन जम को आत्म उपदेश

गर्व न कीजे नानका मत सिर आवे करोड़िया तो केड़ी चीज का मान कर जवानी रे जवानी सदा नहीं रही आउंदी है चली जाए झूठा हुकूमत का मान कर दे इस संसार च बड़े बड़े राजे महाराजे आए जिन्हों का नामो निशान नहीं है माया का मान करना यह भी झूठा मान माया ये तो चलता पानी यह मान भी धर्मकार ने तेन मनुष्य जन्म दिता चंगे कम करने हौमे हंकार फिर रहे हैं याद रख एक दिन पछता है साहबां का पवित्र पावन उपदेश इस वेले करोड़िए ने पत्थर वर्गा मन पानी काठी सिर को रख दिती दूजी छिन विच मेरे धन गुरु नानक पातशाह के चरणा ते रोज लग पातशाह मेरे बख्श लो मैं पापी मेरे कोलो भुल हो गए अपने चेहरे के दाग जड़े दिखते जे शीशे को जाइए शीशे को ना जाइए तो पता ही नहीं लगता इसे तरह अपने कीते कर्म जड़े हैं उन्हों का पता तो लगता है कि किसी महापुरुष के दर्शन हो जाए महापुरुषों का जीवन साफ शीशा हो अज धन गुरु नानक पातशाह जी निरंकारी जोत बाबे के दर्शन करके करोड़िया रो रही भुब्बा मार के रोई जाते कहता है पातशाह मेरे बख्श अरदास कर आओ आप भी करिए किस तरह करोड़िया नाले रोंदे है ते नाले पड़ता पहला सेवक बोलेगा पिछे सारी समझ

0: जो गुरु का उपदेश सैदा के करोड़िए से बख्श और असी भी इस उपदेश को हिरदे च बसाइए कमाई करिए जो साडा भी जीवन सफल फिर सानू सदा वास्ते की मिलेगा साडा ये लोग सुखी है पर लोग सुखे ने हर पल आते मिले और कहरी सात संगत जिथे होस्टल दिया संगत गुरुद्वारा साहब के प्रबंधा के उद्यम नाल दास रोज आप जी के दर्शन करता है ते आप शब्द द्वारा गुरु नाल तो अज गुरु दरोवर साहेब अमरीकन सिंह ये गुरु प्यारा जत्था ये भी इतने ये भी साढ़े वीर भाई गुरु नानक पिता है एक पिता एक उसके पारक तू मेरा गुरु जो गुरु नानक का सिख गुरु की मर्यादा विच रहेगा भाई उसे कोई विथ नहीं है सारे बापू के बच्चे हैं तो गुरु प्यारे भी आए हैं शब्द एक शब्द की हाजरी वो लगवाण गए उस तो उपरंत कीर्तन की समाप्ति अमृत वेले का प्रोग्राम भी है कल शाम जिस तरह रूटीन कह दी है उसी तरह कीर्तन धन गुरु नानक पातशाह आप जी की महान महान बख्शिश द्वारा बरकरदार गुरमुख प्यारे गुरसिख आप जी ने बख्शे खजाने विचों कीर्तन की भेद शब्द आदर करते डालर अरदास कराते मेरे अंतर जाने गुरु नानक जी आप अपने सिखा बच्चियों सुखी जीवन सदाचार दिया कला बख्शो आओ फते बुलाओ प्यार
1: वाहेगुरु जी का खालसा Thank you.

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, सानू अपने ना पवित्र वचना के द्वारा ये दस रहे हैं कि साड़ी जीवन की यात्रा जो है वो सफल क्यों नहीं हो रही, उस दे विच ऑब्स्टैकल्स की हैं। साडे जीवन की जो विधि है वो किस किस्म की है, तो आओ गुरु बाबा जी के चरणों के विचों पूछिए, महाराज असी अपने जीवन की यात्रा किवें सफल कर सकते हैं, असी अपनी जिंदगी नूं किवें रंगीन बना सकते हैं। तो बाबा जी आखते हैं कि तुहानूं तीन चीज़ां मिलियां, नंबर एक बॉडी माइंड एंड सोल, जो उस दिन शब्द दे विच दास ने अर्ज कीती सी। तो सब तो पहला ओ तन नूं, शरीर नूं जो पॉइंट आउट करते हैं, कहते हैं असी देखते हाँ कि ये जो शरीर सी एक वहीकल सी, एक साधन सी, जिस साधन दे नाल, जिस वहीकल दे नाल तुसी अपनी यात्रा जो है उसनू तय करना सी, एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बॉडी, जड़ी अजीवात्मा इस दे विच ड्राइवर की तरह बैठा हो। बाबा जी आखते हैं किसी भी यात्रा ते सक्सेसफुली पहुंचने दे वास्ते जो उसका वहीकल है उसका परफेक्ट कंडीशन दे विच होना एब्सोल्यूटली लाजमी है। जे वहीकल बिगड़िया होया है, जे वहीकल रिलायबल नहीं है, तो वो यात्रा जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। महाराज जी साडे वहीकल नूं की होया, वट इज रोंग विद अवर वहीकल? वो आखते हैं इत्थे बस नहीं, जदों किसी ने किसी वहीकल दे विच अपनी यात्रा करनी होवे तो उसनू अपने वहीकल का ए टू जी पूरा पता होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए। तो गुरु साहब देखते हैं कि सानू अपना ये जो शरीर वहीकल है इसका कुछ भी पता नहीं, बस असी जन्म ले लिया है, शरीर सानू मिल गया है, भुख लगती असी खा लें, नींद आती असी सौ लें, प्यास लगती असी पी लें, बोल चाल लें, होर जो शरीर के फंक्शन हैं असी वो कर लें, पर सानू इस वहीकल का कोई पता नहीं है एक ही चीज है, एक ही चीज है। तुसी अपनी यात्रा किवें सक्सेसफुली अकम्पलिश करो जदों तुहानू अपने वहीकल के मुतलिक ही कोई पता नहीं, एक ही वस्तु की है। नंबर एक दूसरी गल ए है जो साडे जीवन दे विच परमारत रूहानियत आत्मिकता स्पिरिचुअलिटी पीस ऑफ माइंड स्टिलनेस स्टिलनेस ऑफ माइंड कामनेस ऑफ माइंड इनर जॉय एंड
ਇਨਰ ਬਲਿਸ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

काया कमली है चली उन्हां चीजां दे विच खो गई है गुम हो गई है रच गई है जड़ियां चीजां ने इसे नु ही खराब करना है। स्वाद हन इसलिए ही काया दे वास्ते ही डैमेजिंग बन जाते हैं लेकिन काया उन्हां दी अडिक्टेड हो जाती है इस करके कहते काया कमली। अल्कोहल काया लिए अच्छी है लेकिन काया नु नहीं पता काया उसकी एडिक्टेड हो जाती है जो चीज ने इसे नु ही बर्बाद कर देना है। तो ड्राइवर जो अंदर ला है वो बहुत कमजोर है वो काया का गुलाम हो चुका है काया ने ड्राइवर नु टालिया है काया जो मंगदी है वो उसनु प्रोवाइड करी जा रहा है। काया कमली हंस याना ते जिड़ा हंस है जिड़ी अंदरली आत्मक ज्योत है वो कहते हाले बहुत मध्यम है वो न्याणा है वो हाले उस बुजुर्गी नहीं आई क्योंकि उसने बुजुर्गां दी महापुरुखां दी विचार अपने अंदर ग्रहण नहीं की ना सुनी ना समझी ना विचारी ते उस दे अंदर बुजुर्गी नहीं आई वो याना है जिधर काया लाई फिर दी है उस दे पासे वो चलिया फिर है सारी ह्यूमन सोसायटी जड़ी है वो काया दे पिछे चल रही है सारी ह्यूमन सोसायटी काया नु ही प्लीज करन दे उते लगी पई है। काया कमली हंस याना एक पंक्ति छोर आख दे महाराज जी कहते हैं।

आसा बंदी मूर्ख दे, ए दे बड़ी मूर्ख है, अगां तो अगां दी आसा बंदी जा रही है, पर इस देही नू ए नहीं दिसदा कि मैं बड़े लंबे समय दे फ्यूचर दे वास्ते अपनिया जो आसामां बंदी हां, पर ए नहीं सोचदी कि मैं रहना कदों तक है, कि डे बाय डे मैं ताकतवर होना है कमजोर होना है, डे बाय डे मेरी एज घटनी है या बदनी है, डे बाय डे मेरा एनर्जी लेवल बदना है या घटना है। इस करके एक कंसर्न ही नहीं है, इसका जीव आत्मा इतना न्याणा है कि वो सोचना नहीं कि दिस इज गोइंग टू बिकम वीकर एंड वीकर एंड वीकर, इस दे वास्ते टाइम सिर इस तो मैं अपना कम लवा, और सगों इस दे नाल रलिया होया है अते काया ये जड़ी बड़ी मूर्ख है। तो यह साड़ी सत्संग जी हालत है कि इंद्रियां सबल हैं, असी इन्हां नूं वरतना सी पर यह हुण सानूं वरत रही हैं, असी इन्हां नूं वरतना सी पर वरत यह रही हैं सानूं। तो कितनी ट्रेजेडी की गल है, कितने अफसोस की गल है, महाराज जी ने ए इंद्रियां सानू दित्तियां सन कि इन्हां दे नाल असी अपना परमार्थ की जो यात्रा है वह सिद्ध करनी है, सफल करनी है। और फिर महाराज जी पूछते हैं, भाई ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कि क्या तुद कर्म कमाया, कि तू की कीता है, तू तो सारे दे सारे अपने इस इंस्ट्रू

सारा कुछ गवा के तो फिर चल पे, सारा कुछ गवा के तो फिर केंद्र चले गए अंधले, तू जगत दे विच आके की पाया। जीवन की विदना है, जीवन दी विधि ही नहीं आंदी। महाराज जी ने इस शब्द आख्या है, ए तन माया पाया प्यारे, है मेरे प्यारे इस तन नू तू माया दी रंगन दे नाल रंग लिया है, लबेड़ लिया है, पां चाड़ दिती है। जदों असीं किसे कपड़े नू डाई करदे हां पहलां उस नू पां चाड़दे हां कि रंग पक्का होवे उतरे ना, कहिंदे इस नू तू माया दी पां चाड़ दिती है, माया दे नाल रंग लिया है, अते माया दे नाल रंगिया होया तेरा ए तन रूप चोला जो है, कहिंदे हन लीतड़ा लब रंगाए अते स्वादां दे नाल इस नू तू रंग लिया है, मेरे कंत ना भावे चोलड़ा प्यारे, ऐ मेरे प्यारे वाहिगुरु नू ए तेरा तन ही पसंद नहीं है, यही पसंद नहीं है, मेरे कंत ना भावे उसनू ए पौंदा नहीं है, उसनू ए पसंद नहीं है। जिस तरह का तू इस नू बना लिया, जिस तरह का तू इस नू गिजा लिया, जिस तरह दियां आदतां तू इस अपने तन नू पा लईयां हन, कहिंदे हन अकाल पुरख वाहिगुरु नू इस उत्ते कोई प्रसन्नता नहीं है, मेरे कंत ना भावे चोलड़ा प्यारे, क्यों तन सेजे जाए के उसकी तेरी इंटीमेसी किवें हो सकती है, उसका तेरे नाल मिलन किवें हो सकता है, तेरे तन तो उसनू जो है वह बदबू आती है, तेरा तन जो है माया दे नाल दागी हो चुका है, स्पॉटेड हो चुका है, ए माया दी पहा दे नाल अते गलत किस्म दे अत्यंत किस्म दे स्वादां दे नाल ए इस दे अंदर चिक्कड़ बनिया होया है, ए तन ही हाले अकाल पुरख वाहिगुरु दे प्रेम दे काबल नहीं है। मेरे कंत ना भावे चोलड़ा प्यारे, क्यों तन सेजे जाए, वो तेरी सेज दे उते किमें आवे, तेरे नाल वसल किमें होवे, तेनू वो मिले किमें, कहंदे हन तू अपने तन नू ही नहीं समझिया। साड़ी परमार्थिक यात्रा दा हाल, साड़ी स्पिरिचुअल लाइफ दा ए हाल है कि असी अपने इंस्ट्रूमेंट नू ही नहीं समझे हां। गुरु नानक साहब सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे विचों हुण असी इस नू आरंभ करना है, जो कि अगले एक दो दिन इसकी विचार चलती रहेगी कि सानू गुरबाणी दे विचों सब तो पहला अपने तन दे प्रति समझना चाहिदा है कि साडा तन की चीज है, तन की चीज है जिसनू असीं दिन रात वरतने हैं, असीं वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, पर सानू आज जरूरत है कि असीं गुरु बाबा जी सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी दे विचों जो गुरु साहबां ने इस तन दे प्रति सानू ज्ञान बख्शिया है वो सुनिए अते समझिए कि तन की वस्तु है, उस दे उते 13 नुक्ते महाराज जी दी बाणी दे विचों मिलते हैं, 13 नुक्ते।

इस दुर्लभ वस्तु तो जल्दी तो जल्दी फायदा उठा ला, वो दिन बड़ा नजदीक आ रहा है जिस दिन ये दुर्लभ वस्तु ते तो वापस ले ली जाएगी। सो सानू गुरमत की जो विद्या है उस दे विच अपने तन दे प्रति हर रोजाना इस उपदेश नू, इस सबक नू याद करना चाहिदा है, लिख के सामने रख लेना चाहिदा है कि जिहड़ा मेरा तन है ये दुर्लभ है, ये सब तो वड्डी अकाल पुरख की गिफ्ट है, मेरे ये रब दा सब तो कीमती तोहफा है, ये दुर्लभ है। कहिंदे हन कभी

मानस जन्म दुलंब है, होए ना बारंबार। जो वन फल पाके पोहेंगरे बहर न लागे डार, जिस तरह दरख्त दे नालों टुट के फल नीचे गिर जाए ते दोबारा और टाणी दे नाल नहीं लगदा, एक दफा ए दुर्लभ तन जो है जदों गिर जाएगा धरती उते, फिर इस दे वापस उठन दी कोई उम्मीद कोई आशा कोई चांस बिल्कुल नहीं है, ये दुर्लभ। सो वी आर कैरिंग समथिंग विच इज सो इनवैल्यूएबल। हाउ वेल्थी वी आर एंड हाउ मच थैंकफुल वी आर, वी नीड टू आस्क दिस टू अवर सेल्फ। दूसरा नुक्ता, नंबर एक दुर्लभ, दूसरा नुक्ता गुरु बाबा जी आखते हैं ये मंदिर है। कद असी सोचा कि मैं ही मंदिर हाँ? आप जी ने कितनी दफा ये विचारिया सोचा होएगा कि यही मंदिर है। बाबा जी की बाणी दसदी है कि मंदिर की है। जो सोचते विचारते जानते हैं ऐसे गुरमुखा तो मैं नमस्कार करता हाँ, पर असी बाणी चो तन दे प्रति बॉडी दे प्रति ही इनफॉरमेशन नहीं ली, असी कई दफा बाहरों इनफॉरमेशन इकट्ठी करते फिरते हाँ, जबकि साडे गुरु साहिबान ने इतना भरपूर ज्ञान बख्शिया है सिर्फ बॉडी के मुतलक ही। अज इत्थे 10 दिन कीर्तन करिए इस चीज के उत्ते भी, सिर्फ इस चीज के उत्ते ही ता भी वो इनफॉरमेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकेगी कि बाबा जी ने तन दे उत्ते सानू की कुछ दसिया है कि तन की चीज है, पर असी उसनु किसे होर ही फैशन च पढ़ते हैं। सोच विचार के पढ़ना ज्ञान नाल पढ़ना वो होर चीज है। आओ दूसरा नुक्ता दूसरा पॉइंट महाराज जी दसते हैं ये मंदिर है, टेंपल ऑफ गॉड, दिस इज द रियल टेंपल, इस तो बिना होर कोई टेंपल नहीं। बाणी च किते नहीं आखी कहिंदे ये मंदिर है, बाणी दा प्रमाण सुन कहिंदे हैं

स्पष्ट है लुप्ता, हर मंदिर ये शरीर है, ये शरीर हरि दा मंदिर है, फिर तो इसमें भी नमस्कार करनी बनती, फिर तो ये पूजन योग है। जे ये हरि दा मंदिर है, हर मंदिर ये शरीर है, काया महल मंदिर घर हर का, हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी का एक घर है, अकाल पुरख वाहिगुरु के निवास का स्थान है। तो फिर सानू इस मंदिर नू मंदिर की तरह रखना चाहिए है। मंदिर के अंदर की हुंदा है, मंदिर के अंदर शांति हुंदी, मंदिर के अंदर पूजा हुंदी, मंदिर के अंदर कीर्ति हुंदी, मंदिर के अंदर रेवरेंस हुंदी है। मंदिर के अंदर पवित्रता ही हुंदी है, पवित्रता ही हुंदी है। मंदिर के अंदर रब्बी संगीत हुंदा है, डिवाइन म्यूजिक हुंदा है, कीर्तन हुंदा है। मंदिर के अंदर संगत हुंदी है, साथ संगत हुंदी है। अगर ये मंदिर है तो फिर इस मंदिर का जो एनवायरमेंट है वो सारा मंदिर वर्गा ही होना चाहिए। अगर यह मंदिर है तो इस दे अंदर शांति होनी चाहिए है, टिकाव होना चाहिए है, इस दे अंदर हर वक्त पूजा आराधना होनी चाहिए है, इस दे अंदर सत्संग होना चाहिए है। मंदिर च प्रभु जी का निवास होंदा है, गुरुदेव होंदे हन, इस मंदिर दे विच भी हर वेले गुरुदेव की प्रेजेंस महसूस होनी चाहिए है। मंदिर दी असीं कदे बेअदबी नहीं करदे, उपर असीं जोड़ा पा के नहीं आ सकते क्योंकि बेअदबी हो जाएगी, फिर इस मंदिर दी भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मंदिर दी बेअदबी बड़ा वड्डा गुनाह है। इस मंदिर दी जो के इट्टा नाल लकड़ियां नाल पत्थरां नाल बनिया है, असीं कितने कंसर्न हां कि बेअदबी ना होवे, पर इस मंदिर दी बेअदबी जितनी मर्जी हो जाए उस दे वास्ते असीं कदे कंसर्न नहीं हां। सर्टन थिंग्स तुहानू पता है कि असीं इस मंदिर च नहीं लिया सकते, खाण वालियां पीण वालियां इस मंदिर च असीं नहीं लिया सकते, ना असीं इत्थे कुक कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना वरता सकते हैं। अगर लै आइए बनाइए खाइए पीए तो इत्थे झगड़ा हो जाएगा, पर वो वस्तुआं इस मंदिर च असीं किवें लै जाने हैं जिसनू महाराजी मंदिर आखते हैं। इस मंदिर च असी वह तमाम चीजा ता ही ले जाने हां कि सानू यह ज्ञान ही नहीं मिलिया गुरु बाबा जी की बाणी तो हाले तक कि असल मंदिर इंसान आ तेरा शरीर है, इस मंदिर दे अंदर ओही कुछ ले जा जो जान दे योग है, इस मंदिर दे विच कोई भी ऐसी वस्तु पाई जो योग नहीं है बहुत वड्डा गुनाह अते बहुत वड्डा पाप हो जाएगा। इस मंदिर नू पवित्र तो वध के पवित्र रख, इस मंदिर के अंदर का वातावरण जो है वह पवित्रताई वाला रख, पर साढ़े अंदर की है वैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो अपन कर कर्म। असी तो यह कुछ पाई बैठे हाँ तो मंदिर की कितनी वड्डी असी बेअदबी कर रहे हैं। तन के मतलब जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, व्हीकल है,